ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी शिखर वार्ता संपन्न की। उन्होंने भारत में नई कंपनियां लगाने के लिए करीब 12 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। वार्ता के बाद ताकाइची ने कहा, जापान और भारत एक दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाकर सुदृढ़ और समृद्ध बनेंगे। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह का पारस्परिक व पूरक सहयोग बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मैंने इसी सोच के साथ कई विषयों पर चर्चा की। मैंने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। मोदी ने कहा, अगले 10 वर्षों में हम भारत में जापानी निवेश को बढ़ाकर लगभग 100 खरब येन कर देंगे और यहां मौजूद जापानी कंपनियों की संख्या को दुगना कर देंगे। ताकाइची ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर और अहम खनिजों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की कंपनियों ने लगभग 130 सहयोग दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट का शुल्क बढ़ाने से जुड़ा मसौदा जारी किया है। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का मौजूदा शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी 1,200 डॉलर से अधिक कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले आवर्जन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन लागू किया गया था। निवास वीज़ा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन है। मसौदे के तहत अधिकतम 3 माह के वीज़ा का ऑनलाइन और ऑफलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन कर दिया जाएगा। 1 साल के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 33,000 येन जबकि ऑनलाइन 27,000 येन होगा। 5 साल या उससे लंबी अवधि के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन और ऑनलाइन 65,000 येन कर दिया जाएगा। सरकार शुक्रवार से जनता की राय जानना शुरू करेगी, जिसके बाद वो 1 अक्टूबर को ये मसौदा लागू कर देना चाहती है। न्याय मंत्री हिरागुची हिरोशी ने पत्रकारों को बताया कि जापान में विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड उच्च हो गई है और आवर्जन एवं निवास प्रक्रियाओं का प्रबंधन खर्च बढ़ने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए हमें विदेशी नागरिकों से इस खर्च का कुछ भार उठाने

का अनुरोध करना होगा। टोक्यो में बृहस्पतिवार को कारोबार के अंतिम चरण में जापानी मुद्रा येन में डॉलर के मुकाबले अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसमें कुछ देर के लिए एक येन से अधिक की मजबूती आई, लेकिन बाद में ये फिर लुढ़क गया। दिन के कारोबार में येन 162 के निचले स्तर पर रहा, लेकिन शाम करीब 4:05 की अवधि में ये बढ़कर 161.1 के स्तर पर पहुंचा और बाद में शाम 5 बजे ये कमज़ोर होकर 161 के मध्य स्तर पर आ गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के मुख्य कोच मोरियासु हाजिमे ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप से स्वदेश लौटने के बाद पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता और टीम रणनीति दोनों में और सुधार की जरूरत है। मोरियासु टीम के साथ बृहस्पतिवार को जापान लौटे। उन्होंने जापान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मियामोतो त्सुनेयासु और राष्ट्रीय टीमों के निदेशक यामामोतो मासाकुनी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। नॉकआउट राउंड के पहले मैच में 5 बार के चैंपियन ब्राजील से 2-1 से पराजय के बाद जापान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मोरियासु ने कहा कि वे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप के दौरान और टूर्नामेंट से पहले के पूरे सफर में टीम का हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने वाले कई समर्थकों की बदौलत ही जापानी टीम डटकर खेल पाई। मोरियासु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि जापान में अब तक जो फुटबॉल का विकास हुआ है उसके दम पर वो वैश्विक स्तर पर स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि यदि जापानी टीम इसी प्रकार मजबूत होती रही तो वो अंततः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन सकती है। जापान की प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस साल गर्मियों में रिकॉर्ड बोनस दिया है। तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के 45 साल बाद पहली बार औसत बोनस 10 लाख येन का आंकड़ा पार कर गया। जापान कारोबारी महासंघ खेई दानरेन के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान की प्रमुख कंपनियों में ग्रीष्मकालीन बोनस औसतन 10,08,706 येन यानी $6,250 से अधिक रहा। येन के संदर्भ में ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.88% की वृद्धि और लगातार 5वें वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाता है। खेई दानरेन ने 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली 112 प्रमुख कंपनियों का सर्वेक्षण किया। मोटर वाहन और इस्पात सहित 5 क्षेत्रों में बोनस में गिरावट आई, लेकिन अन्य 14 उद्योगों में बोनस बढ़ा। अलौह धातु क्षेत्र में 18% और खाद्य क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। खेई दानरेन के एक वरिष्ठ अधिकारी नित्ता हिदेशी के अनुसार कारोबार अच्छा होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, मासिक वेतन वृद्धि से कुल मिलाकर बोनस राशि भी बढ़ी। नित्ता ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों ने बड़े बोनस शायद इसलिए दिए ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना जाएं। मध्यवर्ती टोक्यो के शिबुया वार्ड के अधिकारियों का कहना है कि कचरा फेंकने से जुड़े नए जुर्माने को लागू करने के पहले ही महीने में 300 से अधिक मामलों में जुर्माना लगाया गया। शिबुया वार्ड ने 1 जून से सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों में कूड़ा फेंकने वालों पर 2,000 येन यानी लगभग $12.4 का जुर्माना लगाना शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय मुख्य रूप से शिबुया और हाराजुकु रेलवे स्टेशनों के आसपास के व्यस्त इलाकों में फेंके जाने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा को देखते हुए अपनाया गया था। वार्ड का कहना है कि उसके कर्मचारियों सहित लगभग 50 कर्मियों ने 2400 घंटे गश्त लगाते हुए 30 जून तक 324 मामलों में जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कई मामले शिबुया सेंटरगाई और दोगेनजाका इलाके के थे और आधे से ज्यादा मामलों में 20 से 39 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर उल्लंघनकर्ताओं ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया। कचरे की सूची में इस्तेमाल शुदा सिगरेट शीर्ष पर थी और उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें व खाली कैंस जैसी चीजें थीं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो ताबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: おかえりなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद そば भी खाया।
3: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योको देश्ता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तनोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तनोशिकत्ता देस
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तनोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तनोशी देस
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तनोशिकत्ता देस
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: तनोशिकत्ता देस, すごく तनोशिकत्ता देस।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देस
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देस
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकत्ता देस
1: भी है जो
5: ई देस
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देश का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देश हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देस। शिनसेत्सु देस
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तनोशी ल्योको देस
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तनोशी ल्योको देश्ता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देस। とても賑やかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी। सुबाराशी
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई।
5: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाइ, नागानो वा दो देश्टा का?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो, टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी शिखर वार्ता संपन्न की। उन्होंने भारत में नई कंपनियां लगाने के लिए करीब 12 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। वार्ता के बाद ताकाइची ने कहा, जापान और भारत एक दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाकर सुदृढ़ और समृद्ध बनेंगे। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह का पारस्परिक व पूरक सहयोग बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मैंने इसी सोच के साथ कई विषयों पर चर्चा की। मैंने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। मोदी ने कहा, अगले 10 वर्षों में हम भारत में जापानी निवेश को बढ़ाकर लगभग 100 खरब येन कर देंगे और यहां मौजूद जापानी कंपनियों की संख्या को दुगना कर देंगे। ताकाइची ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर और अहम खनिजों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की कंपनियों ने लगभग 130 सहयोग दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट का शुल्क बढ़ाने से जुड़ा मसौदा जारी किया है। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का मौजूदा शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी 1,200 डॉलर से अधिक कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन लागू किया गया था। निवास वीज़ा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन है। मसौदे के तहत अधिकतम 3 माह के वीज़ा का ऑनलाइन और ऑफलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन कर दिया जाएगा। 1 साल के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 33,000 येन जबकि ऑनलाइन 27,000 येन होगा। 5 साल या उससे लंबी अवधि के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन और ऑनलाइन 65,000 येन कर दिया जाएगा। सरकार शुक्रवार से जनता की राय जानना शुरू करेगी, जिसके बाद वो 1 अक्टूबर को ये मसौदा लागू कर देना चाहती है। न्याय मंत्री हिरागुची हिरोशी ने पत्रकारों को बताया कि जापान में विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड उच्च हो गई है और आव्रजन एवं निवास प्रक्रियाओं का प्रबंधन खर्च बढ़ने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए हमें विदेशी नागरिकों से इस खर्च का कुछ भार उठाने का अनुरोध करना होगा। टोक्यो में बृहस्पतिवार को कारोबार के अंतिम चरण में जापानी मुद्रा येन में डॉलर के मुकाबले अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसमें कुछ देर के लिए 1 येन से अधिक की मजबूती आई, लेकिन बाद में ये फिर लुढ़क गया। दिन के कारोबार में येन 162 के निचले स्तर पर रहा, लेकिन शाम करीब 4:05 की अवधि में ये बढ़कर 161.1 के स्तर पर पहुंचा और बाद में शाम 5 बजे ये कमज़ोर होकर 161 के मध्य स्तर पर आ गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के मुख्य कोच मोरियासु हाजिमे ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप से स्वदेश लौटने के बाद पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता और टीम रणनीति दोनों में और सुधार की जरूरत है। मोरियासु टीम के साथ बृहस्पतिवार को जापान लौटे। उन्होंने जापान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मियामोतो त्सुनेयासु और राष्ट्रीय टीमों के निदेशक यामामोतो मासाकुनी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। नॉकआउट राउंड के पहले मैच में 5 बार के चैंपियन ब्राजील से 2-1 से पराजय के बाद जापान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मोरियासु ने कहा कि वे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप के दौरान और टूर्नामेंट से पहले के पूरे सफर में टीम का हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने वाले कई समर्थकों की बदौलत ही जापानी टीम डटकर खेल पाई। मोरियासु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि जापान में अब तक जो फुटबॉल का विकास हुआ है उसके दम पर वो वैश्विक स्तर पर स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि यदि जापानी टीम इसी प्रकार मजबूत होती रही तो वो अंततः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन सकती है। जापान की प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस साल गर्मियों में रिकॉर्ड बोनस दिया है। तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के 45 साल बाद पहली बार औसत बोनस 10 लाख येन का आंकड़ा पार कर गया। जापान कारोबारी महासंघ खेई दानरेन के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान की प्रमुख कंपनियों में ग्रीष्मकालीन बोनस औसतन 10,08,706 येन यानी $6,250 से अधिक रहा। येन के संदर्भ में ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.88% की वृद्धि और लगातार 5वें वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाता है। खेई दानरेन ने 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली 112 प्रमुख कंपनियों का सर्वेक्षण किया। मोटर वाहन और इस्पात सहित 5 क्षेत्रों में बोनस में गिरावट आई, लेकिन अन्य 14 उद्योगों में बोनस बढ़ा। अलौह धातु क्षेत्र में 18% और खाद्य क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। खेई दानरेन के एक वरिष्ठ अधिकारी नित्ता हिदेशी के अनुसार कारोबार अच्छा होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, मासिक वेतन वृद्धि से कुल मिलाकर बोनस राशि भी बढ़ी। नित्ता ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों ने बड़े बोनस शायद इसलिए दिए ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना जाएं। मध्यवर्ती टोक्यो के शिबुया वार्ड के अधिकारियों का कहना है कि कचरा फेंकने से जुड़े नए जुर्माने को लागू करने के पहले ही महीने में 300 से अधिक मामलों में जुर्माना लगाया गया। शिबुया वार्ड ने 1 जून से सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों में कूड़ा फेंकने वालों पर 2,000 येन यानी लगभग $12.4 का जुर्माना लगाना शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय मुख्य रूप से शिबुया और हाराजुकु रेलवे स्टेशनों के आसपास के व्यस्त इलाकों में फेंके जाने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा को देखते हुए अपनाया गया था। वार्ड का कहना है कि उसके कर्मचारियों सहित लगभग 50 कर्मियों ने 2400 घंटे गश्त लगाते हुए 30 जून तक 324 मामलों में जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कई मामले शिबुया सेंटरगाई और दोगेनजाका इलाके के थे और आधे से ज्यादा मामलों में 20 से 39 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर उल्लंघनकर्ताओं ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया। कचरे की सूची में इस्तेमाल शुदा सिगरेट शीर्ष पर थी और उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें व खाली कैंस जैसी चीजें थीं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। 写真をたくさん撮りましたそれからおそばも食べましたとても美味しかったです
2: そうですかよかったですね
3: 長野の人はとても親切でした
4: 楽しい旅行でしたね
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारू जी ने मिया से कहा
2: おかえりなさい
1: आओ आओ
2: 長野はどうでしたか
1: नागानो कैसा रहा
0: मिया ने उत्तर दिया
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु
1: बहुत मजा आया
3: शशिन वो तकसान तोरिमाशिता
1: खूब तस्वीरें खींची
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता
1: उसके बाद सोबा भी खाया
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देसु
1: बहुत स्वादिष्ट था
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा
2: सो देसु का
1: अच्छा
2: योकात्ता देसु ने
1: ये तो अच्छी बात है
0: मिया ने आगे कहा
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्सु देशिता
1: नागानो के लोग बहुत भले थे
0: फिर ताम ने कहा
4: तानोशी ryoko deshita ne
1: लगता है मजेदार सफर रहा
0: दोस्तों मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता desu
1: यानी बहुत मजा आया इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे
0: इस वाक्य में
5: सुगोकु
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था
0: तो सुनिए और दोहराइए ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है
5: तानोशिकत्ता देसु सुगोकु तानोशिकत्ता देसु
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण
5: ओइशिकत्ता देसु
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था ये
5: ओइशी देसु
1: का भूतकाल रूप है इसके अलावा
5: योकात्ता देसु
1: भी है जो
5: ई देसु
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है
0: ई देसु का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है ये अपवाद है इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देसु हटाकर देशिता लगाते हैं
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देसु हटाएं और देशिता लगाएं तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशिता
0: और जब संज्ञा के बाद देश लगा हो जैसे
5: तानोशी ryoko desu
0: यानी मजेदार सफर है तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तानोशी ryoko deshita
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्ता,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्ता
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। とてもにぎやかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई,
5: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: दोबारा खुश आमदेद।
1: नागानो वा दो देश्ता का?
0: नागानो कैसा था?
2: मिया जवाब देती है,
3: सुगोकु तनोशिकत्ता देस।
0: बहुत मजा आया।
3: शाशिन ओ ताकसान तोरिमाशिता।
0: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता।
0: इसके अलावा सोबा नूडल्स भी खाए।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देस।
0: बहुत मजेदार थे।
2: हारू-सान कहती हैं,
1: सो देस का।
0: अच्छा।
1: योकात्ता देस ने।
0: बहुत अच्छी बात है।
2: मिया बाजारी रखती है,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देशिता।
0: नागानो के लोग बहुत हमदर्द थे।
2: ताम कहती है,
4: तनोशी ल्योको देशिता ने।
0: पुरलुत्फ सफर था ना?
2: लगता है उसका नागानो का सफर बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी नागानो जाऊँ।
0: छुट्टियों में जरूर जाएं। लेकिन फिलहाल सामेइन को आज का मकालमा एक बार फिर सुनवाते हैं।
1: ओ काएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: सुगोकु तनोशिकत्ता देस। शाशिन ओ ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। तोतेमो ओइशिकत्ता देस।
1: सो देस का, योकात्ता देस ने।
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देशिता।
4: तनोशी ल्योको देशिता ने।
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत मजा आया।
3: सुगोकु तनोशिकत्ता देस।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से अपने किसी तजर्बे के बारे में तासुरात बता सकते हैं।
0: सुगोकु के मानी है वाकई ये बहुत ज्यादा, और तनोशिकत्ता देस यानी मजा आया। आज का नुक्ता माजी के किसी तजर्बे के बारे में तासुरात के इजहार से मुतालिक है। ये तो आपको याद ही होगा कि फेल का सिग़ा माजी बनाने के लिए उसके आखिरी मस को मश्ता में तब्दील किया जाता है। इसमें सिफत या इस्म का माजी का सिग़ा इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले ई इसमें सिफत को देखते हैं। ये वो इसमें सिफत होते हैं जिनका अख्तिताम ई पर होता है। मसलन तनोशी यानी मज़ा आ रहा है। इसका माजी का सिग़ा बनाने के लिए इसके आखिरी ई को हटाकर कत्ता लगाया जाएगा। चुनांचे तनोशी दिस का माजी का सिग़ा होगा तनोशिकत्ता देस यानी मज़ा आया।
2: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए। ख्याल रखिए कि कत्ता के तलफ़ में का और ता के दरमियान हल्का सा वक्फा है।
5: तनोशिकत्ता देस। सुगोकु तनोशिकत्ता देस।
0: आज के मकालमे में एक और मिसाल ओइशिकत्ता देस है, जो ओइशी देस यानी मज़ेदार है का माजी का सिगा है। इसी तरह योकत्ता देस है, जो ई देस यानी अच्छा है का माजी का सिगा है।
2: ई का सिगा माजी योकत्ता आम तरीका कार से हटकर है, ऐसा ही है ना?
0: जी हाँ, इसे इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा। ना इसमें सिफत और इस्म का माजी का सिगा बनाने के लिए देस को बदल कर देशता करना होगा।
2: ना इसमें सिफत के बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है।
0: जी हाँ, ये इसमें सिफत अगर इस्म से पहले आए यानी इस्म की तशरीह करे तो उसके आखिर में इजाफी ना लगता है। मसलन शिनसित्स यानी हमदर्द किसी इस्म से पहले शिनसित्स ना हो जाएगा। जुमले में अकेला इस्तेमाल होने की सूरत में ये शिनसित्स देस होगा। शिनसित्स देस का माजी का जुमला बनाने के लिए आखिरी देस को देशता करना होगा। चुनाचे ये बनेगा शिनसित्स देशता। अगर जुमले में देस से पहले इस्म है जैसा कि तनोशी ल्योको देस, तो इसके लिए भी यही तरीक़ेकार होगा। चुनाचे इसका माजी का सेगा होगा तनोशी ल्योको देशता।
2: और अब सफर के तासरात से मुतालिक एक मकालमा सुनिए।
4: ओसाका वा दो देशिता का?
6: योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देशिता।
0: और अब मकालमे की तशरीह।
4: ओसाका वा दो देशिता का?
2: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देशिता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देशिता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
6: योकात्ता देस।
2: अच्छा था।
0: योकात्ता ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
6: तोतेमो निगियाका देशिता।
2: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत, और निगियाका देशिता ना इसमें सिफत निगियाका ना यानी पुर रौनक का माजी का सिगा है।
2: तो सामेइन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देशिता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगियाका देशिता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। आप सफर से वापस आए हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि सफर शानदार था। शानदार एक ई इसमें सिफत है।
5: सुबाराशी। सुबाराशी।
0: तो सामीन कोशिश करें।

0: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में हारूसान ने इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें।
3: ओकायरी नासाई।
2: ओकायरी नासाई यानी दोबारा खुश आमदेद, कहीं बाहर से वापस आने वाले फर्द से कहा जाता है। अफराद खाना या बेतकल्लुफ दोस्त इसे मुख्तसर करके सिर्फ ओकायरी भी कह सकते हैं, जबकि होटल का अमला वगैरह बाहर से वापस आने वाले मेहमान को ज्यादा शायस्तगी के साथ ओकायरी नासाई मा से कहेगा।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
4: ओकायरी नासाई,
3: ओकायरी नासाई,
4: ओकायरी नासाई।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें मियां सफर के बारे में अपने तासुरात बयान करती है।
3: ओकायरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
5: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे कारा お蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
2: हीरा, जापान आकर आपने शिंकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिंकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
2: शिंकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: मुसाफिर खिड़कियों से बाहर का नजारा करते हैं या फिर बेंतो यानी खाने के डब्बों से लुत्फ अंदोज होते हैं।
2: कई मुसाफिर किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारते हैं, जबकि कुछ ऊँगते हुए भी नजर आते हैं। डिब्बे पुरसकून और साफ सुथरे होने के बाद सफर नहायत खुशगवार होता है।
1: जी, और यकीनन आरामदेह भी।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी शिखर वार्ता संपन्न की। उन्होंने भारत में नई कंपनियां लगाने के लिए करीब 12 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। वार्ता के बाद ताकाइची ने कहा, जापान और भारत एक दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाकर सुदृढ़ और समृद्ध बनेंगे। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह का पारस्परिक व पूरक सहयोग बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मैंने इसी सोच के साथ कई विषयों पर चर्चा की। मैंने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। मोदी ने कहा, अगले 10 वर्षों में हम भारत में जापानी निवेश को बढ़ाकर लगभग 100 खरब येन कर देंगे और यहां मौजूद जापानी कंपनियों की संख्या को दुगुना कर देंगे। ताकाइची ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर और अहम खनिजों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की कंपनियों ने लगभग 130 सहयोग दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट का शुल्क बढ़ाने से जुड़ा मसौदा जारी किया है। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का मौजूदा शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी 1,200 डॉलर से अधिक कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन लागू किया गया था। निवास वीज़ा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन है। मसौदे के तहत अधिकतम 3 माह के वीज़ा का ऑनलाइन और ऑफलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन कर दिया जाएगा। 1 साल के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 33,000 येन जबकि ऑनलाइन 27,000 येन होगा। 5 साल या उससे लंबी अवधि के वीज़ा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन और ऑनलाइन 65,000 येन कर दिया जाएगा। सरकार शुक्रवार से जनता की राय जानना शुरू करेगी, जिसके बाद वो 1 अक्टूबर को ये मसौदा लागू कर देना चाहती है। न्याय मंत्री हिरागुची हिरोशी ने पत्रकारों को बताया कि जापान में विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड उच्च हो गई है और आव्रजन एवं निवास प्रक्रियाओं का प्रबंधन खर्च बढ़ने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए हमें विदेशी नागरिकों से इस खर्च का कुछ भार उठाने का अनुरोध करना होगा। टोक्यो में बृहस्पतिवार को कारोबार के अंतिम चरण में जापानी मुद्रा येन में डॉलर के मुकाबले अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसमें कुछ देर के लिए 1 येन से अधिक की मजबूती आई, लेकिन बाद में ये फिर लुढ़क गया। दिन के कारोबार में येन 162 के निचले स्तर पर रहा, लेकिन शाम करीब 4:05 की अवधि में ये बढ़कर 161.1 के स्तर पर पहुंचा और बाद में शाम 5 बजे ये कमज़ोर होकर 161 के मध्य स्तर पर आ गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के मुख्य कोच मोरियासु हाजिमे ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप से स्वदेश लौटने के बाद पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता और टीम रणनीति दोनों में और सुधार की जरूरत है। मोरियासु टीम के साथ बृहस्पतिवार को जापान लौटे। उन्होंने जापान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मियामोतो त्सुनेयासु और राष्ट्रीय टीमों के निदेशक यामामोतो मासाकुनी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। नॉकआउट राउंड के पहले मैच में 5 बार के चैंपियन ब्राजील से 2-1 से पराजय के बाद जापान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मोरियासु ने कहा कि वे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप के दौरान और टूर्नामेंट से पहले के पूरे सफर में टीम का हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने वाले कई समर्थकों की बदौलत ही जापानी टीम डटकर खेल पाई। मोरियासु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि जापान में अब तक जो फुटबॉल का विकास हुआ है उसके दम पर वो वैश्विक स्तर पर स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि यदि जापानी टीम इसी प्रकार मजबूत होती रही तो वो अंततः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन सकती है। जापान की प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस साल गर्मियों में रिकॉर्ड बोनस दिया है। तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के 45 साल बाद पहली बार औसत बोनस 10 लाख येन का आंकड़ा पार कर गया। जापान कारोबारी महासंघ खेई दानरेन के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान की प्रमुख कंपनियों में ग्रीष्मकालीन बोनस औसतन 10,08,706 येन यानी $6,250 से अधिक रहा। येन के संदर्भ में ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.88% की वृद्धि और लगातार 5वें वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाता है। खेई दानरेन ने

0: 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली 112 प्रमुख कंपनियों का सर्वेक्षण किया। मोटर वाहन और इस्पात सहित 5 क्षेत्रों में बोनस में गिरावट आई, लेकिन अन्य 14 उद्योगों में बोनस बढ़ा। अलौह धातु क्षेत्र में 18% और खाद्य क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। खेदानरेन के एक वरिष्ठ अधिकारी नित्ता हिदेशी के अनुसार कारोबार अच्छा होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, मासिक वेतन वृद्धि से कुल मिलाकर बोनस राशि भी बढ़ी। नित्ता ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों ने बड़े बोनस शायद इसलिए दिए ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना जाएं। मध्यवर्ती टोक्यो के शिबुया वार्ड के अधिकारियों का कहना है कि कचरा फेंकने से जुड़े नए जुर्माने को लागू करने के पहले ही महीने में 300 से अधिक मामलों में जुर्माना लगाया गया। शिबुया वार्ड ने 1 जून से सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों में कूड़ा फेंकने वालों पर 2000 येन यानी लगभग $12.4 का जुर्माना लगाना शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय मुख्य रूप से शिबुया और हाराजुकु रेलवे स्टेशनों के आसपास के व्यस्त इलाकों में फेंके जाने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा को देखते हुए अपनाया गया था। वार्ड का कहना है कि उसके कर्मचारियों सहित लगभग 50 कर्मियों ने 2400 घंटे गश्त लगाते हुए 30 जून तक 324 मामलों में जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कई मामले शिबुया सेंटरगाई और दोगेनजाका इलाके के थे और आधे से ज्यादा मामलों में 20 से 39 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर उल्लंघनकर्ताओं ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया। कचरे की सूची में इस्तेमाल शुदा सिगरेट शीर्ष पर थी और उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें व खाली कैंस जैसी चीजें थीं।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाए, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योको देश्ता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: たのしかったです。すごくたのしかったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです。
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देश का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु। शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तानोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देस। とても賑やかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी, सुबाराशी।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की

0: उठती है, आप भी याद कर लीजिए।
1: ओकाएरी नासाई,
2: ओकाएरी नासाई एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
3: ओकाएरी,
2: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
3: ओकाएरी नासाइमासे,
2: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
1: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
2: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
2: जैसे क्योतो, टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। मियां ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
2: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
2: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: मुसाफिर खिड़कियों से बाहर का नजारा करते हैं या फिर बेंतो यानी खाने के डब्बों से लुत्फ अंदोज होते हैं।
2: कई मुसाफिर किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारते हैं, जबकि कुछ ऊँगते हुए भी नजर आते हैं। डिब्बे पुरसुकून और साफ सुथरे होने के बाद सफर नहायत खुशगवार होता है।
1: जी, और यकीनन आराम दे भी।